दिवस रात दुई दाई दाया खेलें सगल जगत, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर।

राग गुजरी महला चौथा। हर के जान सतगुर सतपुरखा, बिनो करो गुर पास। हम कीरे किरम सतगुर सरनाई, कर दया नाम प्रगास। मेरे मीत गुरदेव, मोको राम नाम प्रगास। गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के बड़ भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास। हर हर नाम मिलै तृप्ता सह, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हरस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर सरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत, जित हरस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगास। राग गुजरी महला पंजवा। काहे रे मन चित वह उद्यम, जा हर हर जियो परया। सैल पत्थर मह जंतो पाए, ताकर जिका गह कर धरिया। मेरे माधो जी सतसंगत मिले सो तरिया। गुरु प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोय न किसकी धरिया। सिर सिर रिजक संभाहे, ठाकुर काहे मन भाव करिया। ऊडे ऊडावै सह कोसा, तिस पाछै बचरे शरिया। तिन कवन खिलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया।

तेरा अंत ना पारा भरिया। रागासा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमागम अपारा। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा। हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हारा। हरा पे ठाकुर हरा पे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुणाख बखाणा। जो सेवै जो सेवै तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जान जुग मह सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जे निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ बहु सिमृत सास जी कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वडावर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई। तुदापे सृष्ट सब उपाई जी तुदापे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान ओई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई जो तो पावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा करहें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाण। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला।
तित सर्वरडय पहिले निवासा पाणी पावक तिन्हे किया। पंक जो मोह पग नहीं चाला हम देखा तह डूबी अले। मन एक ना चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलया रहाओ। ना हों जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरणा जिंतु नाहीं विसरिया। आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की हे तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पवजल तरण कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जप तप

आई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दले हो सर्व ठौर मोह सहाई। दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाएंगे हे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक ना माने हो। सिमरत शास्त्र वेद स्वै बहु भेद, कह हम एक ना जाने हो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तोहे बखाने। दोहरा सग

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सह सेती मन वजियां बाधाइयां। राग रतन परवार प्रियां शब्द गावण आईया शब्दो तां गावो हरी केरा मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल हो तू मन मेरे दुख सावे सारना। अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गल्ला स्मृत स्वामी सो क्यों मनहो बिसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाहीं कर तेरै करता तेरै सब किश है जिस देहे सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाहीं कर तेरै साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाईया। कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पूजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दी आए बड़ियाईया। कह नानक सुनो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। बाजे पंच शब्द तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द बाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे आनंद।

दुख हरता एह बिद को स्वामी तै काहे बिसराया। जावहि शरण गहि कृपा निध,

अजामल पापी जग जाने निमुख बाहे निस्तारा। नानक कहत चेत चिंता मना

हम अवगुण परहि एक गुण नाही। अमृत षाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जाम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई। सो कहौ टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसम दी, नूर अर सह गुर सह चटियै। तुद डिठे सच्चे पाते साह, मल जन्म जन्म दी कटियै। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहा दैसाहु। जिस पास बैठे आसोहिया, सबना दा वेसाहु। सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहां दैसाहु। जिस पास बैठिया सोहिया, सब ना दा वेसाहु। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सोरठ महला नामा, जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने। जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने। रहाऊ

हरख सोग तेरा है न्याराओ नाहे मान अपमाना आसा मनसा सगल त्याग जग तेरा है निरासा काम क्रोध जिह पर सैनाहन तेह काट ब्राह्म निवासा गोर किरपा जिह नर कौ कीनी तेह एह जुगत पछानी नानक लीन पयो गोबिंद स्यो ज्यो पानी संग पानी गोर किरपा जिह नर कौ कीनी तेह एह जुगत पछानी नानक लीन पयो गोबिंद स्यो

का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्व रखिया गुर दयाल है, भय दुख विनाशन है, भगत वत्सल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अचुत है, बिलावल महला पंजवा, ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बणाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई, रहाउ राख लिए तिन रखनहार, सब ब्याध मिटाई, कहो नानक कृपा भई प्रभ भय सहाई, सोहिला राग गौड़ी दीपकी महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीरते आखिए करते का हुए बिचारो, तित कर गावो सोहेला सिवरे हो सिर जनहारो, तुम गावो मेरे निरभउ का सोहेला, हौ वारी जित सोहेले सदा सुख होए, रहाओ नित नित जियड़े संभालियन, देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवै तिस दा ते कवन सुमार, संबत साहा लिखिया मिलकर पावह तेल, देहो सज्जन असीसड़िया ज्यो होवै साहिब स्यो मेल, कर कर एहो पाहुचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिय नानक से देह आवन, राग आसा महला पहला, छे घर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एक वेस अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए, सो कर राख वडाई तो रहाओ, विश्वे चसिया घड़िया पहरा, थित्ती वारी माहो हुआ, सूरज एक रुत अनेक, नानक करते के केते वेस, राग तनासरी महला पहला, गगन मैथाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वा जंत पेरी, रहाओ सहस्तव नैन नन नैन है तोहे कौ, सहस मूरत नना एक तोही, सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध इव चलत मोही, सब मह जोत जोत है सोए, तिस द चानण सब मह चानण होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए, हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो, अन दिनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल देह नानक सारंग कहो, होए जाते तेरे नाए वासा।
राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा हे। पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा हे। कर साधु अंजुलि पुन वड्डा हे, कर डंडौत पुन वड्डा हे। रहाओ साकत हर रस साधना जानिया, तिन अंतर हौ मैं कंडा हे। ज्यो ज्यो चलह चुबै दुख पावह, जम काल सहह सिर डंडा हे। हर जान हर हर नाम समाणे, दुख जन्म मरण पाव खंडा हे। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा हे। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, करो बिनंती सुनहो मेरे मीता। संत टहल की बेला, इहा खाट चलहो हर लाहा। आगे बसन सुहेला, औध कटै दिन सुरैणा रे। मन गुर मिल काज सवारे, रहाओ इह संसार विकार संसे मह। तरियो ब्रह्म ज्ञानी, जिस है जगाए पिया वै इह रस। अकथ कथा तिन जानी, जाको आए सोई बिहाजह। हर गुर ते मन है बसेरा, निज कर महल पावो सुख सहजे। बहु

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मियाँ।

ग्यारह में होनी पाए परे मुर्दार, ज्ञानी नचे बजे बावे रूप करे सिंगार, ऊंचे कुके वादा गावे जोदा का विचार, मूर्ख पंडित हिकमत हो जित संजय करे प्यार, धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार, जति सदावे जुगत न जाने छठ बह कर बार, सब को पूरा आपे होवे कट न कोई आके, पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तुलिया जापे महला पहला।

0: तित नाम लाग ते तीस ते आवे जतीत पीसर मन वस्या सोई नाम सिमर गंगे पतामे चरण चित अमृत रसिया तित नाम गुरु गंभीर गारु मत सतकर संगत उद्रिया सोई नाम अचल भगते पवतारण अमरदास गुर को फुरिया नाम कित संसार किरण रव सुरतर साखे उत्तर दखन पूब देश पश्चिम जस पाखे जन्म तय सक्यथ जित नाम हर हृदय निवासे सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन असासे पलो प्रसिद्ध तेजो तनो कल जोड़ कर त्याए ओ सोई नाम भगत पवजल हरन गुर अमरदास तै पायो।
1: नाम तिहावे देव तेतीस और साधक सिद्धनार नाम खंड ब्रह्मंड तारे जह नाम समाद्यो हरख सोग समकर सहारे नाम सिरोमन सर्व में भक्त रहे लिवतार सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करतार नाम सिरोमन सर्व में भक्त रहे लिवतार सोई नाम पदार्थ अमर गुर तुस दियो करतार।
2: सत सूरो शील बलवंत सत पाए संगत सगण गुरु मत निर्वैर लीना जिस धीरज तुर तवल तुजा सेत बैकुंठ बीना परसे संत प्यार जे करतारे संजोग सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर कीतो जोग। नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाय मुख मिष्ट बाणी तन सतगुरु सेवियो जिस पसायक गम जानी कुल समूह समुद्रे पायो नाम निवास सक्यथ जन्म का लुचर गुर परस्यो अमर परगास।
3: बारज कर दहने सिद्ध सन्मुख मुख जोवे रिद बसे बावांग जो तीन लोकांतर मोह हृदय बस अकहियो सोए रास्ते नहीं जातो मुखो भगत उचरा अमर गुर इत रंग रातो मस्तक निशान सच्चो कर्म कल जोर कर त्यायो परस्यो गुरु सतगुर तिलक सर्ब इच्छ तिन पायो।
4: चरण त परस के अथ चरण गुर अमल पवल रहे हाथ त परस के अथ हाथ लगे गुर अमर पे जेहे त परस के अथ जे गुर अमर पनिच नैन त परस के अथ नैन गुर अमर पिखिज सरवन त परस के अथ सरवन गुर अमर सुनिज सक्यथ सो ही हो जित ही बसे गुरु अमरदास निज जगत पित सिक्यथ सो सिर जल पने जो सिर निवे गुर अमर नित।

एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास।

सोरठ महला पंजवा अंतर की गात तुम ही जानी तुझ ही पाहे निबेरो बख्श ले।

कर फिरो। अंतर की गत तुम ही जानी, तुझ ही पाहे निबेरो। बख्श ले हो साहिब प्रभ अपने, लाख खते कर फेरो। प्रभ जी